मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज तथा 104 मेगाहर्ट्ज एफएम पर ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आज सन 2026 अगस्त महीने की 4 तारीख दिन है मंगलवार। आकाशवाणी के तवांग केंद्र से आज का हमारा प्रसारण अब आरंभ होता है। आज के इस प्रसारण को आप श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए उपस्थित रहेंगे प्रसारण सहायक श्रीमती सांगे चोमू, नियंत्रण कक्ष में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री थाम त्रिंग, श्री हेमंता स्वर्गिरी और सुश्री शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित अभियांत्रिकी सहायक हैं श्री न्यूटन बोरा और श्री अश्युत बर्मन, मुंबई में उद्घोषक हैं श्री थुपतन टाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज का हिंदी उद्घोषक थाम टाशी। आकाशवाणी सुन रहे आप सभी श्रोताओं का आज के हमारे इस प्रसारण में हार्दिक स्वागत है।

मीडियम वेव के मीटर बैंड पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2 बज रहे हैं। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अंग्रेजी एवं हिंदी में दोपहर समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर, विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी, और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान

0: पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले स्थगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। 0 आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
4: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल डीएमके के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
1: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, जीडीपी ग्रोथ के बारे में।
0: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
2: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके बाद करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
3: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
0: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्री रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की CBI जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: उड़ीसा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी

0: कम होने लगा है। हालांकि कई परिवार अभी भी बेघर है क्योंकि निचले इलाकों से पानी पूरी तरह नहीं निकला है। इस बीच हीराकुद बांध प्रशासन पानी का बहाव कम होने के बाद 13 स्लुइस गेटों से नियंत्रित तरीके से बाढ़ का पानी छोड़ रहा है, जिससे जलाशय पर दबाव कम करने में मदद मिल रही है। IMD ने अगले 2 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में आंधी तूफान और बिजली गिरने का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम के 8 जिलों में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: केरलम के 14 जिलों में से 8 जिलों में रेड अलर्ट और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और बाढ़ के कारण 13,000 से अधिक लोग अब भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। आज मुख्यमंत्री VD सतीशन ने पथनमथिट्टा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज डलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज डलडमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित, अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हुए हैं। श्रोताओं, प्रस्तुत है भक्ति गीतों का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम वंदना में आज आप सुनेंगे लामा रिंजन सेवांग और लामा दोर्जी फुनसो के आवाजों में बौद्ध भक्ति भजन। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना के अंतर्गत लामा रिंचन सेवांग और लामा दोर्जी फुनसो से बौद्ध भक्ति भजन आकाशवाणी के तवांग केंद्र से जारी है कार्यक्रम वंदना।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह से दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छुपा नहीं सकते।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जनप्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जनप्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग भी मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार का इसमें कोई दखल नहीं है और न ही वो मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन करती है। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से अधिक परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का लाभ मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है। ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में भी गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से अधिक परिवारों का बिजली बिल शून्य हो गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वैश्विक ऊर्जा संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कमी या आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं आया। उन्होंने कहा कि भारत ने पर्याप्त मात्रा में ईंधन भंडार बनाए रखा। इस दौरान घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी और एलएनजी की 100% उपलब्धता सुनिश्चित की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों और बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार के लिए कई दिशा निर्देश भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के पूर्व राज्यपाल डीवाई पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री पाटिल समाज सेवा में विशेष रूप से परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे। श्री मोदी ने कहा कि पूर्व राज्यपाल ने हमेशा दूसरों, विशेषकर गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 210 अंक लुढ़ककर 78,429 पर बंद हुआ। निफ्टी 159 अंक गिरकर 24,615 दर्ज हुआ। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रूपये के पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री मांडविया ने कहा कि 36,000 करोड़ रूपये की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।

कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोर्रापूल थोंगसांगना और चालो एम्पोन चारोइन केतामोर्न को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 615. And in badminton, unseeded Indian pair Krishna Prasad Garaga and Pruthvi Krishnamurthy Roy upset 6-seed Thailand pair to enter the men's doubles second round at the Korea Masters Super 300 badminton tournament in Asan, South Korea today. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:10 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं कार्यक्रम आज की कविता के अंतर्गत एलडी स्कॉलर्स होम विद्यालय तवांग के 5वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी टुंडुप वांगमु दोमगे से एक हिंदी कविता। कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: नमस्ते, मेरा नाम डंडुप वांगमु दोमगे है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरा विद्यालय का नाम है एलडी स्कॉलर्स होम। मेरा कविता का शीर्षक है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस कविता का रचनाकार है हिंदी के प्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रागों में साहस बढ़ता है। चढ़ कर गिरना, गिर कर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। टुकिया सिंधु में गोताखोर लगता है, जा जा कर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं साहस मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना इतिहास इसी हैरानी में। मिट्टी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कभी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नदी चैन को त्याग तुम। संदेश का मैदान छा कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जे जा कर नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।
1: श्रोता, आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज की कविता के अंतर्गत एलडी स्कॉलर्स होम विद्यालय तवांग के 5वीं कक्षा की छात्रिका कुमारी टुंडुप वांगमु दोमगे से एक हिंदी कविता।
3: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।
4: अच्छे उपचार के लिए अब नहीं रहेगा कोई लाचार। देश भर में 60 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी हैं, अब 5 लाख के मुफ्त इलाज के हकदार। अब तक 1.25 लाख रुपए से अधिक मूल्य के मुफ्त उपचार के लाभ दिए जा चुके हैं और स्वाभिमान और सेहत की सौगात का ये सिलसिला जारी है।
5: आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और पात्र लाभार्थी घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:13 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से। कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आज आप सुनेंगे साजन फिल्म के चंद नगमे। तो चलिए कार्यक्रम का पहला नगमा सुनते हैं अलका याग्निक और एसपी बाला सुब्रमण्यम के आवाजों में, बोल समीर के और संगीत नदीम श्रवण का।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। समीर के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है नदीम श्रवण ने।

0: साजन फिल्म के इन्हीं नगमों के साथ ही फिल्म संगीत का साप्ताहिक कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:25 हुए हैं। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग। कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग में आज आप सुनेंगे जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी श्रीमती गेंदेन सोमू से किसी भी अप्रत्याशित घटनाओं से बचने के लिए मॉनसून मौसम के दौरान क्या करें और क्या ना करें विषय पर हुई भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता है दोर्जी ड्रेमा।
1: आकाशवाणी तवांग से प्रसारित कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग तवांग के DGMO यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट तवांग श्रीमती गेंदेन सोमू जी। सबसे पहले गेंदेन सोमू जी, आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू सो मच।
1: तो गेंदेन सोमू जी, आज हमारे इस चर्चा की विषय है नेचुरल कैलामिटीज यानी प्राकृतिक आपदाएं। वैसे प्राकृतिक आपदाएं तो कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हमारे तवांग में बरसात के मौसम में ज्यादातर प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना रहता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज इस कार्यक्रम के जरिए आपसे प्राकृतिक आपदाएं से बचाव के लिए छोटी छोटी जानकारियां प्राप्त करूं और अपने श्रोताओं के साथ साझा करूं। तो सबसे पहले गेंदेन सोमू जी, आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि प्राकृतिक आपदा होते क्या है और इसमें क्या क्या आते हैं।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे यहाँ पे मौका दिया रूबरू होने के लिए तवांग के वासियों से। तो नेचुरल कैलामिटीज में आपका सबसे पहले अभी मॉनसून चल रहा है, तो आप देखिए इसमें फ्लैश फ्लड होता है, लैंडस्लाइड होता है, लाइटनिंग एंड थंडर स्ट्रॉम होते हैं, और फिर विंटर जैसे आते हैं तो आपका फायर एक्सीडेंट्स होते हैं, वाइल्ड फायर, देखिए पूरा जंगल में आग लग जाना, ये सब हमारे नेचुरल कैलामिटीज में है।
1: जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि प्राकृतिक आपदाएं के अंतर्गत लैंडस्लाइड होना, लाइटनिंग्स होना, थंडर स्टॉर्म्स होना, या फिर सर्दी के मौसम में फायर एक्सीडेंट्स होना, ये सब आते हैं। तो अभी मॉनसून सीजन है, बरसात के मौसम है, तो हम अभी के जो स्थिति है इस पर ज्यादा ध्यान देते हुए हमारे इस चर्चे को आगे बढ़ाएंगे। लोग बरसात के मौसम है कहकर अपने काम छोड़कर घर पर बैठे भी नहीं रह सकते हैं, तो उन्हें बाहर जाकर काम करने के लिए जो नेचुरल कैलामिटीज होते हैं, प्राकृतिक आपदाएं होते हैं, इससे बचाव के लिए डूज एंड डोंट्स यानी उस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि अगर किसी को ऐसा स्थिति से गुजरना पड़े तो उस समय अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
2: इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट से टाइम टू टाइम एडवाइजरी जारी किया जाता है। ये हो सके तो आपका लैंडस्लाइड जोन है, नालाज है, और या फिर हमारे सिंकिंग जोन्स है, क्वारी साइड है, ये सब हमारे वल्नरेबल्स हैं जिसमें आपको अवॉइड करना चाहिए। इसमें जाना जितना हो सकता है आप अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बारिश के दौरान देखिए जैसे जमीन हमारा गीला रहता है, जहाँ पे पेड़ का कटाव ज्यादा होता है तो वहां पे आपका वल्नरेबल ज्यादा होता है, लैंडस्लाइड ज्यादा होता है, जिसके कारण जैसे पेड़ कटने की वजह से आपका क्या होता है, फ्लैश फ्लड आते हैं। तो फ्लैश फ्लड इसलिए आते हैं क्योंकि आपने पेड़ काट दिया एंड देन उनका जड़ जो काम करना छोड़ देता है, तब जाके आपका डेब्रिस पूरा लेके आते हैं, हमारा फ्लैश फ्लड बोलते हैं। तो ये सब एरियाज है जिसको आप अवॉइड करना है ड्यूरिंग मानसून। और शायद ज्यादातर यहाँ पे तो नाला या फिर बड़ा बड़ा ये रिवर्स हमारे यहाँ पे नहीं है, अगर हो सके तो समय इसमें भी हम लोगों को जाना नहीं चाहिए। फिशिंग होगा आपके, मछली पकड़ना या फिर आपका नहाना या फिर पिकनिक, इस समय इस दौरान आप जितने हो सके इसको आप अवॉइड कीजिए। एसेंशियल कॉमोडिटीज जो होते हैं, देखिए राशन आपका ड्राई जो जो हम रख सकते हैं, जो स्टॉक में हम लोग रख सकते हैं, मैं हर घर से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा एसेंशियल कॉमोडिटीज को आप स्टॉक में रखिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे तवांग आना मीन्स आप एक रास्ता से होना है, तो इसमें हम लोगों का राशन अपना घर में होना बहुत जरूरी है। जैसे ही आपका बारिश बहुत ज्यादा होता है तो जैसे बिजली हमारी चली जाती है, तो हो सके तो अपना मोबाइल आप चार्ज रखिए,

0: या फिर आप पहले तो हम बहुत टॉर्च लाइट वगैरह रखते थे, पता नहीं आजकल रखते ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि टॉर्च लाइट भी हम रखें घर पे, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ड्यूरिंग मॉनसून। और हमारे यहाँ पे मैंने देखा है कि क्वारी बहुत ज्यादा है जिसमें हाँ, तो निचला स्तर से हम पत्थर तो निकलते जाते हैं, अगर ऊपर स्तर को हमने इग्नोर कर दिया तो वहां से लैंडस्लाइड होने का बहुत चांसेस है। तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस दौरान कुछ कुछ जगह है, जैसे आपका क्वारी साइड हो गया, नालाज हो गया, तो इस सब को आप थोड़ा सा अवॉइड। तो ये रहा आपका मॉनसून के दौरान जो एडवाइजरी होता है। फिर आपने पूछा कि मुझे लाइटनिंग और थंडरिंग के ऊपर में
1: जी,
0: तो इसमें आपका जितना हो सके प्रिक्वेशंस में ये है कि हम लोगों का एक मेंटेलिटी है, लोगों का एक मेंटेलिटी है कि अगर लाइटनिंग होता है या फिर थंडरिंग होता है तो बड़ा बड़ा पेड़ के सामने जाके हम रुक जाते हैं, मतलब शेल्टर हम वहां पे लेते हैं, तो वो हमारे लिए बिल्कुल सेफ नहीं है। क्योंकि लाइटनिंग और थंडरिंग जो होता है वो हम लोगों को सबसे ऊंचा चीज में, सबसे जो टॉलेस्ट होता है उसमें अट्रैक्ट करते हैं, तो उस वजह से हम इंसान को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचते हैं। अभी खेती का सीजन भी है तो खेती में भी बहुत सारा हमारा लोग रहते हैं, तो उनसे मेरा एक गुजारिश है कि खाली पांव जो हम लोग खाली पांव जो जमीन पे काम करते हैं ना, उस वो ना करें, हो सकेगा तो प्लास्टिक का गम्बूट जैसे हम लोग कहते हैं तो उसको आप पहन के ही काम कीजिए, ताकि आपको जो ये करंट है वो आपके बॉडी पर असर ना करे। तो हो सकेगा तो कुछ भी आप नेचुरल कैलिमिटी को देख लीजिए, तो हम लोगों को वार्निंग्स मिलता है, जैसे आपका थंडर स्टॉर्म आना है तो आपको हल्का सा लाइटनिंग आपका पहले होगा
1: जी,
0: तो कुछ हाँ जी हाँ जी, तो उस बीच में आप हो सकेगा तो आप सेफ प्लेस में चले जाइए। अगर आप फील्ड में ही है और बिल्कुल आप यहाँ से वहां कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करना है कि आपका सर को दोनों टांगों के बीच, दोनों पांवों के बीच में जितना हो सके नीचे झुक के, मीन्स अपने आप को बॉल साइज में बोलते हैं एक्सपर्ट्स जो बताते हैं, तो बॉल साइज में अपने आप को करके जितना हो सके नीचे झुक जाना चाहिए, ताकि जो लाइटनिंग होगा, लाइटनिंग का भी एक करंट पास होता है, तो वो आपको इफेक्ट ना करे, तो ऐसा बोला जाता है। तो मैं लोगों से वही गुजारिश करूंगी कि इस तरह का प्रिक्वेशंस जो टाइम टू टाइम हम बताते हैं तो उसको अमल करें। और एक है जो हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जैसे हम बहुत चीप वाला भी यूज कर लेते हैं ना, तो पैसा बचाने के लिए, तो मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि कुछ अच्छा चीज जो ISI मार्क वाला यूज करें। और इनकेस थंडरिंग या फिर स्टॉर्म जैसे हमारा लाइटनिंग होता है, तो उस समय में क्या करना चाहिए आपको, लोगों को सब मेन प्लग्स जो बोलते हैं हम, ये जो तार जो हमारा लगा हुआ होता है, तो उस सबको निकाल देना चाहिए। अगर उस समय आप एक एक चीज को आप निकाल नहीं पाते हैं, तो आपका घर में एक मेन स्विच होता है जो आप पूरा फैमिली मेंबर्स को बताइए कि ये मेन स्विच है, तो मेन स्विच को आप ऑफ कर देने से भी आपका बहुत सारा जान माल का नुकसान कम हो जाएगा।
1: जी जी, आजकल लोग इतने एडवांस्ड हो चुके हैं कि घर के सारे काम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के जरिए करते हैं, तो इससे कई सारे फायदे भी हैं, लेकिन साथ साथ कई सारे खतरे भी जुड़े होते हैं। तो जैसा कि अभी आपने बताया, अगर जब भी लाइटनिंग होते हैं तो आप एक एक पॉइंट से प्लग ऑफ करने से बेहतर सीधे जाकर जहां मेन स्विच होते हैं वहां से ऑफ कर दें।
0: जी, जैसे कि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा ये आपका मोबाइल्स यूज करते हैं ना, जो लाइटनिंग और थंडरिंग के समय में मोबाइल्स को आप अवॉइड कीजिए। और बच्चे आजकल ज्यादातर क्या करते हैं कि आपका ईयरफोन बहुत यूज करते हैं, ईयरफोन यूज करते हैं, या फिर वायर वाला ईयरफोन होगा या फिर वायरलेस वाला ईयरफोन। हाँ जी, तो ये ईयरफोन्स आपका थंडरिंग और लाइटनिंग के दौरान बहुत ज्यादा खतरा होता है, जिससे हमारे जान भी जा सकता है। पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अपने बच्चों को जब भी लाइटनिंग होता है तो ये मोबाइल्स हो गया आपका या फिर ईयरफोन्स हो गया, उसको अवॉइड करने के लिए सलाह देते हैं।
1: जी जी जी, जी हाँ श्रोताओं, जैसा कि अभी आपने सुना, प्राकृतिक आपदा के दौरान अगर आप कहीं जगह पे फंस जाते हैं और आपके पास कोई और चारा नहीं होते हैं, तो उस समय आपको अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमारे डीजे मोतवांग गिंदन समूजी ने आपको बताया, और हम आशा करते हैं आप सब इससे पालन भी करेंगे। तो गेंदन समूजी, हमारे इस चर्चे को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे और भी एक चीज जानना चाहेंगे कि आप तवांग में पोस्टिंग आने से पहले आप ईस्ट सियांग पासीघाट में पोस्टेड थे, तो अभी तक आपके पास हमारे तवांग के लोग प्राकृतिक आपदा से हुए कौन सी घटनाओं को लेकर आए हैं, और अगर कोई आते हैं तो आप उनके लिए क्या करते हैं?
0: हाँ जी, लैंडस्लाइड का थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है, लैंडस्लाइड को लेके, उस प्रॉब्लम को लेके हमारे पास आते हैं। और आपका यहाँ पे गाय, हमारे बहुत सारा लोग पालते हैं, तो गाय जो एपिडेमिक होके जो गुजर जाते हैं उसका रिलीफ हम यहाँ पे देते हैं। और दूसरा, जैसे आपका क्रॉप डैमेजेस हो गया, जैसे मैं इस सियांग में थी तो वहां पे क्रॉप डैमेजेस

0: बहुत ज्यादा होता
1: है।
0: और अभी मॉनसून के सीजन में तो वहां पे आपका क्रॉप डैमेज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, प्लस वहां पे बहुत छोटा छोटा नाला जो है अभी जो मॉनसून में बहुत बड़ा नदी बन के आता है। आपने सुना भी होगा कि वहां पे एक बहुत फेमस रिवर है जो सियांग, तो सियांग जो इस समय फुल स्पीड में होते हैं, बहुत ज्यादा उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आपका पानी जो छोटा छोटा जो नाला थे वो इतना बढ़ जाता है कि पानी एक जगह पे आके रुक जाता है, इनअंडेटेड हो जाता है, तो घर पूरा डूबा वहां पे रहता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। हम तवांग में खुश नसीब है जो हमारे यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है।
1: जी जी, जब आपसे प्राकृतिक आपदाएं से जुड़े ही बातें हो रही है तो आपसे और एक सवाल करना चाहूंगी। जैसे यहाँ के घरों के आसपास हर जगह अभी के समय में लैंडस्लाइड आने की ही संभावना है, या फिर ज्यादा बरसात होने के कारण इलेक्ट्रिक पोल्स गिर सकते हैं, या फिर किसी के साथ ऐसी घटना अगर रात को घटती है तो वह तुरंत अगर सरकार की मदद लेना चाहेंगे तो किससे हम संपर्क कर सकते हैं? आपसे यानी DDMO तवांग से या फिर अन्य कौन सी विभाग से हम संपर्क कर सकते हैं?
0: हाँ जी, सबसे पहले तो इसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं मैं डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर हूं, तो बिल्कुल आप संकोच ना करें, मेरे फोन पे एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। इसके बाद तुरंत जिसको कौन सा विभाग का है तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, तो एनी टाइम डे और नाइट, रात हो या दिन हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा असिस्टेंस आप लोग ले सकते हैं।
1: जी,
0: तो मैं अपना फोन नंबर भी मैं दे देती हूँ।
1: जी जी,
0: तो मेरा नंबर है 9436053326। और कोई नेचुरल कैलेमिटी होता है तो आप किसी से भी संपर्क करने में संकोच ना करें, आप DC साहब को डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, SP साहब को कर सकते हैं, हमारे ADCs को कर सकते हैं, सभी जो आपका सर्कल ऑफिसर्स हैं उनको भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं।
1: जी हाँ, और देखिए अभी के समय में तो फायर एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं समर सीजन में तो, लेकिन सर्दी के मौसम में कुछ जगहों पे कई लोग जंगल जला देते हैं या फिर खेत को जला देते हैं, तो उस समय किसी के साथ एक्सीडेंटली किसी के घर जल जाते हैं तो किसी के फसल जल जाते हैं, या फिर समर सीजन में भी इलेक्ट्रिक फेलियर की वजह से किसी के घर जल जाते हैं, तो उनके लिए आपके डिपार्टमेंट द्वारा क्या करते हैं?
0: हाँ जी, जैसे ये फायर एक्सीडेंट होता है तो उसमें एक घर जल जाने पे हमारे नॉर्म्स के मुताबिक 1,00,000 का आपको असिस्टेंस दिया जाएगा। हम कंपेंसेट नहीं करते हैं, हम रिलीफ देते हैं, तो उसमें आपका ज्यादा नहीं होता है, इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट प्री में काम करते हैं, पोस्ट को हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए हम लोग ट्रेनिंग्स वगैरह बहुत देते हैं जिसमें लोगों को अमल करना चाहिए एक्चुअली, तभी जाके आपका जान माल का नुकसान कम होगा। और आपने बोला कि जैसे झूम खेती के लिए हमारा जंगल जो जला देते हैं, वो अभी आपका गवर्नमेंट का रूल्स के मुताबिक भी ये आपका क्राइम है, आपको नहीं करना चाहिए। खेती भी करता हो तो कुछ एरियाज को आप वाइल्ड फायर जिसको बोलते हैं हम लोग, ऐसा हो जाता है, तो जितना हो सकता है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे एटमोस्फियर को भी बहुत सारा नुकसान होता है, इन्वायरमेंटल लॉसेस बहुत ज्यादा होता है, जैसे आप देखिए उसमें बहुत सारा कीड़ा मकोड़ा है तो वो सब, हाँ जी, तो जानवर्स को बहुत तकलीफ होता है। तो मैंने एक बार देखा भी था कि एक जैसे बच्चे लोग भी उसके चपेट में बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो इस सब का हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। आजकल तो देखिए आपका कुछ भी एडवाइजरी हर किसी के पास में आपका मोबाइल होता है, सोशल नेटवर्क आजकल इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, तो आप डूज एंड डोंट्स कहीं भी कोई सा भी आप साइट में आप जाके ढूंढ लीजिए, आपको डूज एंड डोंट्स कोई सा भी डिजास्टर के ऊपर में आपको मिल जाता है। तो लोगों से मैं गुजारिश करूंगी कि कभी डूज एंड डोंट्स को भी आप पढ़ लीजिए, जो आपका हित के लिए जो होते हैं उसका आप फायदा जरूर उठाइए। मैंने ये देखा है कि फायर एक्सीडेंट किस वजह से होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बुद्धिस्ट ज्यादा है, तो यहाँ पे हम जो ट्रिम जो जलाते हैं तो उसको जला के हम, क्योंकि हर समय हम नहीं रह पाते हैं तो हम लोग निकल के चले जाते हैं, तो उस केयरलेस की वजह से भी हमारा फायर एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें घर जल जाते हैं। तो मैं लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि इस पे थोड़ा सा ध्यान देना कि आप ट्रिम जलाते भी हैं तो उस एक प्लेट में हल्का सा पानी डाल के रखे, और बच्चों को ये आपका मैच बॉक्सेस जो आप माचिस के डिब्बा जिसको बोलते हैं हम, माचिस या फिर लाइटर, ये सब बिल्कुल खेलने के लिए ना दे, जिस वजह से बच्चों को तो पता नहीं होता है कि वो खेलते हैं एंड देन आपका आग लग जाता है, जिस वजह से भी हमारा फायर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है।
1: जी जी, बिल्कुल सही कही है आपने। और देखिए हर साल NDRF ईटानगर से एक्सपर्ट्स आते हैं और जगह जगह पर जाकर लोगों को अवेयरनेस देते हैं, ट्रेनिंग्स देते हैं और कुछ डेमोन्स्ट्रेट दिखाते हैं। हमने भी देखे हैं जब भूकंप आते हैं तो हमें अपने आप को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो फिर भी आज मैं इस कार्यक्रम के जरिए आपसे भी इससे जुड़े जानकारियां लेकर अपने श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?
0: हाँ जी, लाइक

0: आपको पता है कि पूरा अरुणाचल भूकंप के जोन में आते हैं, जोन 5 में आते हैं। तो जोन 5 मीन सबसे ज्यादा रिस्की वाला। तो इसमें अर्थक्वेक में तो सबसे इम्पोर्टेंट है, हायर बिल्डिंग्स में आपको नहीं होना चाहिए। अभी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत सारा स्टोरेज का आपको बिल्डिंग्स डेवलप हो रहा है, तो वो सब अर्थक्वेक के बहुत ज्यादा खतरा है। तो मैं लोगों से भी यही गुजारिश करूंगी कि जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो थोड़ा सा ये आप इंजीनियर से एडवाइजरी ले लीजिए कि किस तरह का बिल्डिंग स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए जो आपके इनकेस, क्योंकि अर्थक्वेक को हम नहीं रुका सकते हैं। अर्थक्वेक, हाँ, अर्थक्वेक तो होना ही है कभी ना कभी दिन, तो उसको हम नहीं रुका सकते हैं, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स हम लोग ले सकते हैं। तो आप जब बिल्डिंग बना रहे हैं तो आप उसमें कुछ प्रिकॉशनरी लेना है, तो आप एनी डिपार्टमेंट को, जैसे वॉकिंग डिपार्टमेंट है आपका, PWD है, तो उनका इंजीनियर से आप सलाह लें कि किस तरह का स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे होना चाहिए। प्लस हमारे यहाँ पे जब स्ट्रक्चर बन जाते हैं तो उसमें अर्थिंग बहुत जरूरी होता है। अर्थिंग तो न्यू बिल्डिंग्स में अर्थिंग शायद कैपेसिटी के मुताबिक शायद नहीं भी देते हैं, क्योंकि हम लेमेन हम लोगों को पता नहीं है कि किस तरह का क्या होना चाहिए। तो मैं लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि जब भी आप बिल्डिंग बनाते हैं तो इंजीनियर्स का हेल्प जरूर लें, और इनकेस आप अर्थक्वेक के दौरान, अर्थक्वेक में आप फंस जाते हैं, तो सबसे पहले तो आपको शांत रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही हम घबरा जाते हैं तो नुकसान हमें ज्यादा पहुंचता है। अगर घर के अंदर आप हैं तो एक्सपर्ट ऐसे बताते हैं कि आप ये जो आपका बिल्डिंग्स का कॉर्नर में आप जाके जहाँ पे आपका पिलर्स रहता है वो सबसे ज्यादा सेफ होता है। लेकिन बच्चों को जब हम सिखाते हैं, अगर वो स्कूल में होते हैं तो उसको डक कवर एंड होल्ड बोला जाता है। डक कवर एंड होल्ड मीन्स यू हैव टू डक योरसेल्फ डाउन, उसके बाद में अपने आप को दोनों हाथों से आपका सर को पकड़ लेना है, एंड देन टेबल जो उनका डेस्क रहता है तो उसका नीचे घुस के आपको खुद को बचाना है, क्योंकि ऊपर से जो आपका सीलिंग से या फिर कुछ भी वॉल आपका गिरेगा तो आपका सर को नुकसान ना पहुंचे। तो इस तरह का ट्रेनिंग हमारे NDRF या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट टाइम टू टाइम देते हैं। लोगों को भी पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, जस्ट दिमाग से थोड़ा समय के लिए निकल जाता है, तब हम लोग हैं उसको याद दिलाने के लिए। और जैसे आपने कहा NDRF साथ साथ SDRF भी है, जिसमें हाँ NDRF नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स जिसको कहा जाता है, अभी हमारे यहाँ पे स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स भी है। हाँ, इसमें अभी मैन पावर कम है, स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स में आपका मैन पावर कम है, फिर भी जब भी उनका सहयोग हमें लगता है तो हम उसे कॉल करते हैं, तो सबसे पहले वो आते हैं। जब उनके पास इक्विपमेंट्स कम पड़ जाता है या फिर उनसे जब किसी को बचाव करना हो तो उस समय नहीं हो पाते, तब हम लोग NDRF को बोलते हैं, तो NDRF आके तब हमें सहयोग देते हैं। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट NDRF SDRF का प्री रोल बहुत ज्यादा होता है। प्री मीन्स एनी डिजास्टर से पहले ना, तो उसमें हम लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग जिसमें ट्रेनिंग बहुत दिया जाता है, तो लोगों को ट्रेनिंग जब भी है बोलते हैं तो आना जरूरी है, आप पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है
1: जी, और डेमोन्स्ट्रेट भी दिखाते हैं।
0: हाँ जी,
1: उसको भी देखना बहुत जरूरी है और समझना।
0: हाँ जी मैम
2: जी। तो जिंदन से मुझे आज आपने अपनी कीमती समय निकलकर हमारे स्टूडियो आए और हमारे श्रोताओं को प्राकृतिक आपदाएं से बचाव के लिए बहुत सारे जानकारियां दिए हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।
3: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी श्रीमती गेंदन सोमू से, किसी भी अप्रत्याशित घटनाओं से बचने के लिए मानसून मौसम के दौरान क्या करें और क्या ना करें विषय पर हुई भेंट वार्ता। उनसे भेंट करता थे दोर्जी ड्रेमा। इसके साथ ही साप्ताहिक कार्यक्रम अपनी धरती अपने लोग अब समाप्त होता है।

ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:45 हो रहे हैं। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने अरुणाचल प्रदेश की ग्लोर लेक को भारत का 101वां रामसार स्थल घोषित किए जाने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री यादव ने लिखा है कि ये उपलब्धि जैव विविधता संरक्षण, जल एवं जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने बताया है कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये स्वच्छ मीठे पानी की झील लोहित जिले के वाक्रो के निकट कमलांग टाइगर रिजर्व एवं वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है और ये जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र यानी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है। श्री यादव ने लिखा है कि ग्लो लेक चारों ओर से घने हरियाली से घिरी हुई है। इस स्थल तथा इसके जल ग्रहण क्षेत्र के 150 से अधिक वृक्ष प्रजातियां और 49 ऑर्किड की प्रजातियां दर्ज की गई है। उन्होंने कहा है कि ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश को अपना पहला रामसर स्थल प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इस ऐतिहासिक मान्यता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के प्रति आभार व्यक्त किया। जिला प्रशासन ईटानगर कैपिटल रीजन द्वारा आगामी 8 अगस्त यानी शनिवार को शाम 8 बजे से 9 बजे तक देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर में शहरी व्यापी आपातकालीन तैयारी अभ्यास के तहत सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन करने जा रहा है, जिसके तहत शाम ठीक 8 बजे से एयर रेड सायरन बजाया जाएगा, जिसके बाद 15 मिनट यानी 8:15 तक ईटानगर कैपिटल रीजन में ब्लैकआउट रहेगा। नागरिकों से सभी लाइट्स बंद रखने, घरों के भीतर रहने, न घबराने तथा जिला प्रशासन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया एजेंसियों के साथ संपूर्ण सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। अभ्यास के दौरान यातायात प्रतिबंध लागू किए जाएंगे तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया संबंधी गतिविधियां संचालित की जाएंगी। आम जनता से पुलिस, सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों तथा मॉक ड्रिल में तैनात अन्य अधिकारियों के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। अरुणाचल प्रदेश सरकार के युवा मामले विभाग ने माय भारत तथा भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से राज्य के युवाओं से जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज अरुणाचल प्रदेश में भाग लेने का आह्वान किया गया है। ये एक अनूठी डिजिटल स्टोरी टेलिंग पहल है जिसका उद्देश्य राज्य की समृद्ध विरासत, संस्कृति, परंपराओं, पर्यटन तथा प्रेरणादायक स्थानीय कहानियों का उत्सव मनाना है। विभाग ने शैक्षणिक संस्थानों, युवा संगठनों, एनएसएस स्वयंसेवकों, माय भारत के सदस्यों, स्टार्टअप्स, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हितधारकों, गैर सरकारी संगठनों तथा स्थानीय समुदाय से सक्रिय भागीदारी करने तथा युवाओं को अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक धरोहर का ब्रांड एम्बेसडर बनाने में प्रेरित करने का आग्रह किया। इच्छुक प्रतिभागी माय भारत के आधिकारिक इवेंट पेज पर पंजीकरण कर कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोरजी खांडू गवर्नमेंट कॉलेज तवांग ने विद्यार्थियों ने आज समर वेकेशन के दौरान विभिन्न सरकारी विभागों में एक महीने तक इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद अपने इनोवेशन चैलेंज प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उपायुक्त नामग्याल लांगमो के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र अनुभवों को सुशासन तथा जनसेवा में सुधार के व्यवहारिक समाधान के रूप में प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। इस अवसर पर उपायुक्त ने विद्यार्थियों की गहन समझ, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण तथा नवाचारी सोच की सराहना की। शासन व्यवस्था में युवाओं की भागीदारी के तहत महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने घोषणा की है कि सर्वश्रेष्ठ नवाचार प्रस्तावों को संबंधित विभागों द्वारा क्रियान्वयन के लिए अपनाया जाएगा। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि सभी 5 प्रस्तुतियों से प्राप्त महत्वपूर्ण सुझावों को जिला प्रशासन द्वारा संभावित रूप से अपनाने के लिए प्रशिक्षण किया जाएगा। ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों क्रादादी, शियोमी, सियांग, लेपारादा और लोअर सियांग को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए येलो, साथ ही ईस्ट कमिंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, कामले, लोहित, नामसाई और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बहुत तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश के साजी नातुंग ने हिमाचल प्रदेश स्थित 6,111 मीटर ऊंचे माउंट यूनाम की चोटी पर ब्लैक फ्लिप करके भारतीय पहले बनकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2026 में अपना नाम दर्ज कराया है। इस उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री चौहान मेन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर बधाई देते हुए लिखा कि साजी नातुंग का ये उल्लेखनीय कारनामा असाधारण साहस, दृढ़ संकल्प और रोमांचकारी भावना का प्रतीक है जो अरुणाचल प्रदेश तथा पूरे देश के युवाओं को प्रेरित करेगा। इसी के साथ

आकाशवाणी ईटानगर से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय संध्या के 7:55 हुए हैं। चलिए अब सुनते हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम कौमी तराने के अंतर्गत सैम बहादुर फिल्म का एक देशभक्ति नगमा।

शंकर महादेवन, विशाल ददलानी और दिव्या कुमार के इस देशभक्ति नगमे के साथ ही कार्यक्रम कौमी तराने अब समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब सुनिए व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत। कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत का पहला फरमाइश किया है दादा बाबू रोड गिरिधीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मीफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया ने। आप सभी के फरमाइश पे पेश है याराना फिल्म से किशोर कुमार का गाया गीत बोल अनजान के और

अगला फरमाइश प्राप्त हुआ है पजोनिया जल्लोन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चांसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चांसोलिया से पाकीजा फिल्म से लता मंगेशकर के गाए गीत का। गुलाम मोहम्मद द्वारा लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है कैफी आजमी ने।

श्रोताओं, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमों का आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगले फरमाइश की ओर। मंडरेलिंग तवांग से तिंजिन डोलकर सरगी रिपा द्वारा ग्यांगर गांव के तन्यांग मैरी नवांग चुनजुम तिंजिन सोमू पेमा यांगजुम और जम्बे यांगचिन को समर्पित लव इन टोक्यो फिल्म का नगमा। इस नगमे को लिखा है हजरत जयपुरी ने, गाया लता मंगेशकर ने और संगीत दिया है जेडी पांचाल ने।

गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोरा, कीर्ति अरोरा, भूमिका अरोरा और ममता अरोरा के फरमाइश पर सत्ते पे सत्ता फिल्म से आशा भोसले और दिलराज कौर का गाया नगमा, बोल गुलशन बावरा के तथा संगीतकार आरडी बर्मन।

से ज्योति सुरीन ने। आपकी फरमाइश पे प्रस्तुत है फूल और अंगार फिल्म से कुमार सानू और सुजाता गोस्वामी का गाया गीत। रानी मलिक के लिखे इस गीत को संगीत से संवारा है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत व्हाट्सएप फरमाइशों पर आधारित चंद सदाबहार पुराने नगमे। यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक जरूर व्हाट्सएप करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत और फिल्म का नाम अवश्य लिखें। इसके साथ ही आपकी फरमाइशों पर आधारित कार्यक्रम पुराने हिंदी फिल्मी गीत अब समाप्त होता है।

आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। श्रोताओं, आपसे कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित स्पोर्ट्स स्कैन, तत्पश्चात समाचार संध्या तथा न्यूज़ एट 9। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और

0: जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। डूरंड कप फुटबॉल के रोमांचक मुकाबले में एसी दिल्ली ने जमशेदपुर एफसी को हराया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के पदक विजेताओं को भी खेल मंत्री ने सम्मानित किया। पुनीत मनोहर ने अंडर 14 टेनिस मास्टर्स डबल्स का खिताब जीता और अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल से अमेरिका के यूजीन में शुरू। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां आज खिलाड़ियों का जो है प्रदर्शन मिला जुला रहा। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है मिला जुला भी रहा और कई खिलाड़ियों ने क्वालिफायर्स में तो कई अन्य खिलाड़ियों ने राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में मुकाबला किया है। आज कल भी भारत के कई खिलाड़ी प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशाल शर्मा। विशाल, लगातार एक के बाद एक बैडमिंटन टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं, ऐसे में कई युवा प्रतिभाओं को अनुभवी खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका भी मिल रहा है। कोरिया मास्टर्स भी एक ऐसा ही मंच है जहां भारतीय खिलाड़ियों ने अलग अलग वर्ग में प्रतिस्पर्धा की। तो विशाल, कैसा रहा आज का दिन खिलाड़ियों का?
1: जी प्रशांत, आपने सही कहा कि युवा और अनुभवी खिलाड़ियों के लिए कोरिया मास्टर्स का मंच बेहद अहम है। प्रशांत, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का दिन मिला जुला रहा। पुरुष डबल्स में कृष्ण प्रसाद गारगा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। भारतीय जोड़ी ने थाईलैंड की छठी वरीयता प्राप्त जोड़ी चेलोमपोन चेरोन कितामोन और वोरापोल थोंगसा एनगा को सीधे गेम में हराकर उलटफेर करते हुए राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली। प्रशांत, भारतीय जोड़ी ने अपने से बेहतर रैंकिंग वाली जोड़ी को सिर्फ 42 मिनट में 21-16 21-18 से हराया और अब कृष्ण प्रसाद और पृथ्वी अगले दौर में जुनसुके कुबो और जिया हाओ होविन वोंग की सिंगापुर की जोड़ी तथा यंग योग किम और ते योंग शिन की कोरिया की जोड़ी के बीच होने वाले मुकाबले के विजेता से भिड़ेंगे।
0: जी विशाल, ये तो आज का मुकाबला हुआ जिसमें आपने पुरुष डबल्स के बारे में बताया, इसके अलावा और अलग अलग वर्ग में आज कैसा किया खिलाड़ियों ने प्रदर्शन?
1: प्रशांत, पुरुष डबल्स में कृष्ण प्रसाद गारगा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति राय को मिली जीत आज के दिन की एकमात्र जीत रही। अन्य मुकाबलों की बात करें तो आज भारत को हार का सामना करना पड़ा। पुरुष डबल्स में अच्युतादित्य राव डोडावारप्पू और अर्जुन रेड्डी पोचाना की भारतीय जोड़ी को कोरिया के सोल ग्यू चोई और मलेशिया के वी शेम गोह की जोड़ी के खिलाफ एकतरफा मुकाबले में 3-21 10-21 से हार झेलनी पड़ी। और महिला डबल्स की बात करें तो प्रिया कोजिंग बाम और श्रुति मिश्रा को भी रेरिना हिरामोतो और कोकोना इशिकावा की जापान की दूसरी वरीयता प्राप्त जोड़ी के खिलाफ 15-21 13-21 से हार का मुंह देखना पड़ा। और प्रशांत, पुरुष सिंगल्स क्वालिफायर के पहले दौर की बात करूं तो भारत के तुषार सुवीर ने कनाडा के शौर्य गुलाइया को 21-15 21-12 से हराया, लेकिन अगले दौर में जापान के शोगो ओगावा के खिलाफ 10-21 17-21 से हार गए और प्रतियोगिता से बाहर हो गए।
0: विशाल, कृष्णा और पृथ्वी ने तो इस प्रतियोगिता में आगाज कर दिया है और विशाल कल भी कई खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे, किन खिलाड़ियों पर नजरें होंगी विशाल?
1: प्रशांत, तन्वी ने पिछले ही रविवार को ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीता था और इस प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व भी कर रही हैं। तो जाहिर सी बात है सबकी निगाहें एक बार फिर तन्वी शर्मा पर हैं। इसके अलावा अलग अलग वर्ग में खिलाड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अगर पुरुष सिंगल्स की बात करें तो सनीथ दयानंद जापान के युदाई ओकिमोतो से खेलेंगे, वहीं थारून मन्नेपल्ली का मुकाबला कोरिया के यो तेई बिन से होगा। रौनक चौहान भी कल कोर्ट पर खेलते नजर आएंगे। रौनक कोरिया के जियोन योग जिन से खेलेंगे, वहीं अनुभवी किदाम्बी श्रीकांत इसराइल के डेनिल डुबो वेंको से मुकाबला करेंगे और किरण जॉर्ज कोरिया के पार्क सेंग यांग से खेलेंगे। पुरुष सिंगल्स के अन्य मुकाबले में मिथुन मंजुनाथ और चीन के झू स्वान चिन कोर्ट पर आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स की बात की जाए

0: तो प्रशांत कल एक ही मुकाबला होगा जिसमें विश्व तेज गोबुरु और भार्गव राम एरिगेला की भारतीय जोड़ी चीन की अरुणताई और आरुंचिया से खेलती नजर आएगी।
1: विशाली ये तो हुई पुरुष वर्ग की बात, महिला वर्ग और मिक्स डबल्स में कौन कौन से खिलाड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं कल?
0: जी प्रशांत, कल के मुकाबले में ताइपे ओपन विजेता तन्वी शर्मा पर सबकी निगाहें होंगी। महिला सिंगल्स में कल तन्वी शर्मा का मुकाबला चीन की युआन आन शी से होगा। सभी प्रशंसकों की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी होंगी। इसके अलावा महिला वर्ग में ईशा रानी बरुआ का मुकाबला कोरिया की ली सो यूल से होगा और तान्या हेमनाथ जापान की हिना आकेचाई से खेलेंगी। रक्षिता श्री रामराज कोरिया की ए योन यू और मानसी सिंह कोरिया की किम जो यून से खेलती नजर आएंगी। अब मिक्स डबल्स का जहां तक बात है तो ईशान भटनागर और श्रुति शर्मा की जोड़ी सात्विक रेड्डी कनापुरम और राधिका शर्मा से खेलेगी। वहीं एक अन्य मुकाबले में ध्रुव रावत और मनीषा की जोड़ी मलेशिया की लू बिंग कुन और नूरा किला मायसरा से मुकाबला करेंगी। जी प्रशांत, फिलहाल तो यही जानकारी।
1: विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद इस विस्तृत जानकारी के लिए। चलते हैं फुटबॉल के मैदान की ओर। डुरंड कप जो कि रांची में खेला जा रहा है, रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए डुरंड कप मुकाबले में रोमांचक खेल देखने को मिला। हमारी रांची संवाददाता ने बताया कि जमशेदपुर एफसी ने शुरुआती बढ़त बनाई, लेकिन दूसरे हाफ में एससी दिल्ली ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया।
2: डुरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में एससी दिल्ली ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराकर 3 महत्वपूर्ण अंक हासिल किए। रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में जमशेदपुर एफसी ने पहले हाफ में बढ़त बनाई। टीम के खिलाड़ी सनम ने गोल कर जमशेदपुर एफसी को 1-0 से आगे कर दिया। हाफ टाइम तक जमशेदपुर एफसी की बढ़त कायम रही। दूसरे हाफ में एससी दिल्ली ने आक्रामक खेल दिखाते हुए शानदार वापसी की। नामते ने लगातार 2 गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की पिछड़ने की स्थिति से 2-1 की बढ़त दिला दी। निर्धारित समय तक एससी दिल्ली की बढ़त बरकरार रही और टीम ने जमशेदपुर एफसी को 2-1 से हराकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। नामते के 2 गोलों की बदौलत एससी दिल्ली ने डुरंड कप में अहम 3 अंक दर्जित किए। स्पोर्ट्स कैन के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रूपये के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रूपये की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
3: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
1: राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया ने खेल मंत्री मनसुख मांडविया के दिए गए आश्वासन पर खुशी व्यक्त की।
4: काफी अच्छा लग रहा है, हमारा एयरपोर्ट पे इतना अच्छा स्वागत किया है और अभी आज हम मनसुख मांडविया सर से भी मिले हैं। आगे के लिए भी उन्होंने पूरा सपोर्ट करने के लिए बोला है, तो जब एक एथलीट ऐसा सुनता है एक सपोर्ट स्पोर्ट्स मिनिस्टर से, तो हमारा अंदर से ही रहता है कि नहीं, हमें और आगे अच्छा करना।
1: जैस्मिन ने ओलंपिक 2028 को अपना प्रमुख लक्ष्य बताया।
4: मेन टारगेट तो वही है, लेकिन बीच में जितने भी हमें कॉम्पिटिशन्स मिलेंगे वो भी काफी अच्छे हैं उस प्रिपरेशन के लिए, और बिल्कुल हम सब हर कॉम्पिटिशन में हर चीज को भी उठा के चलते कि हाँ ये पर्टिकुलर है, इसमें अपना बेस्ट देना है, यहाँ से सीखना है और जो चीज हमने सीखी है वो यहाँ पे यूटिलाइज करनी है, तो मेन तो हमारा LA20 है।
1: उधर खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज दिल्ली में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले युवा खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली अनाहत सिंह और कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष जूनियर टीम के आर्यवीर दीवान, युशा नफीस और गुरविंद सिंह को सम्मानित किया। 18 वर्ष की अनाहत पिछले सप्ताह कैनेडा में वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप का महिला सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी। ये अनाहत का विश्व चैंपियनशिप में दूसरा पदक है। उन्होंने पिछले वर्ष काहिरा में कांस्य पदक जीता था। डॉक्टर मांडविया ने युवा खिलाड़ियों से बातचीत करके एशियाई खेल 2026 और ओलंपिक खेल 2028

0: 28 के लिए प्रोत्साहित किया। अनाथ को उनकी इस बड़ी उपलब्धि पर बधाई देते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि उनकी ऐतिहासिक जीत लाखों युवा भारतीयों को स्क्वॉश खेलने के लिए प्रेरित करने वाली है। स्वदेश लौटने के बाद अनाथ ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के साथ खेलने से आत्मविश्वास बढ़ता है।
1: दिस टूर्नामेंट हैजंट ऑलवेज बीन द बेस्ट फॉर मी फॉर द लास्ट 4 इयर्स दैट आई प्लेड इट एंड आई हैव ऑलवेज एंडेड अप बीइंग रियली क्लोज टू इट बट नॉट नो ओवरटर्निंग इट सो या आई एम रियली ग्लैड दैट आई वाज एबल टू डू इट दिस ईयर ग्रोन अप प्लेइंग इजिप्शियंस फॉर since I've started playing sports so I, it doesn't really affect me so much when I go into court it's just like playing another opponent no matter what the nationality is but yeah I mean doing it and getting close to doing it after Joshna like you said she's growing up like looking at her playing the tournaments and you know watching her play squash and I've really been inspired by her so I think just getting to do it after is something that I'm really happy talking to my coaches about it and seeing you know playing more of the senior events now because I'm not a junior anymore so I think just going and doing that and getting more experience and traveling around the world and playing the top players I have two events in the PSA, in the professional circuit before I go for the Asian Games. So I think I'm just focusing on that right now. But of course, Asian Games has been in the picture since the last one ended. So just focusing on that and building up to it as well.
0: और श्रोताओं, अभी अभी हमें जानकारी मिली है कोलकाता में डूरंड कप के मैच में मोहन बगान सुपर जायंट्स का मुकाबला साउथ यूनाइटेड एफसी से हो रहा है। नवीनतम समाचार के अनुसार मैच में मोहन बगान ने 4-0 की बढ़त बना ली है।
2: In a Durand Cup group stage match at the Vivekananda Juva Bharati Kirangan in Kolkata today, Mohun Bagan Super Giant faced South United FC. Mohun Bagan holds a 4-0 lead with Manvir Singh scoring two goals while Alberto Rodriguez and Rahul Beke added one goal each. Kollan Laha, Akashbani News, Kolkata.
0: और अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। पुनीत मनोहर ने जर्मनी के ड्यूरेन में आयोजित 49वें इंटरनेशनल डाइचे टेनिस मिस्टर शाफ्टन अंडर 14 में डबल्स का खिताब जीत लिया है। इस इवेंट को टेनिस यूरोप सुपर कैटेगरी के 5 बहुप्रतिष्ठित सुपर कैटेगरी इवेंट्स में से एक माना जाता है।
3: साउथ कोरिया के मिंजी योन चोई के साथ जोड़ी बनाकर पुनीत ने इस बड़े टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल जीता। राउंड ऑफ 32 से आगे बढ़ने के बाद इस जोड़ी ने राउंड ऑफ 16 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए थाईलैंड के पुन्नापत निम्नू आंकुल और कोरिया के हिम वोंग को सीधे सेटों में 6-3 6-1 से मात दी। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने कोलंबिया के मैथियास लानोस अस्टुडिलो और अर्जेंटीना के मैनुअल पनियागुआ एलेक्सी निसेर की चुनौती को पार करते हुए 6-4 6-2 से जीत हासिल की। इसके बाद इस जोड़ी ने सेमीफाइनल में इटालियन जोड़ी यूलिस बारी और रुगेरो कोंडोरेली के खिलाफ 6-4 6-2 की शानदार जीत के साथ चैंपियनशिप मैच में अपनी जगह पक्की की। ग्रैंड फिनाले में इस जोड़ी का मुकाबला मैक्सिको के पैट्रिसियो अल्वारे शावेस और ब्राजील के विटोर मार्केस मोरेस से हुआ। पुनीत और मिंजियोन ने आक्रामक शुरुआत की और पहले सेट में 1-0 की बढ़त बनाकर मैच पर शुरुआती पकड़ बना ली थी। तभी उनके प्रतिद्वंदियों को खिताबी मुकाबले से हटना पड़ा। इसी के साथ पुनीत और मिंजियोन की जोड़ी ने खिताब अपने नाम किया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: और चलते चलते बात एथलेटिक्स पर भी कर लेते हैं। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कल से अमेरिका के यूजीन में शुरू हो रही है। भारत ने इस प्रतियोगिता में 36 सदस्य दल भेजा है। ये प्रतियोगिता 9 अगस्त तक खेली जाएगी। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 23 पुरुषों और 13 महिलाओं की टीम की घोषणा की है जो हेवर्ड फील्ड में 5 दिनों तक चलने वाले 18 ट्रैक और फील्ड स्पर्धाओं में प्रतिस्पर्धा करेंगी। अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत स्प्रिंट मध्यम दूरी की स्पर्धाओं बाधा दौड़ कूद थ्रो रेस वॉक और रिले स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहा है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन कर

0: और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग भी मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी

0: से धमकी से और दमन से दिया है, इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
1: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्सटेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
0: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
1: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
2: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देशभर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। UPI ने पिछले महीने 236.60 करोड़ रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 188

0: 59 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 रुपए पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
2: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते है, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के बोर्रापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट एआई 2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2 से 3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देशभर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द न्यूज एट 9। The headlines. Parliament passes registration of births and deaths amendment bill to make delayed registration more stringent. Supreme Court directs Reserve Bank of India to prepare and circulate a SOP for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. 274 fugitive criminals brought back to India from 36 countries between 2019 and 2026, says Home Ministry. New Delhi terms so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce. Sports Minister Dr. Mansukh Mandavia felicitates Indian medal winners after successful Glasgow Commonwealth Games campaign. And in badminton, Indian pair of Krishna Prasad Garaga and Prithivi Krishnamurthy Roy advances to the men's doubles second round at Korea Masters Tournament in Assen.